0: मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यदिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, दुरूस साबका में सीरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब में हमने कुछ बातें अर्ज की। कुछ जिक्र तो था जजीरा अरब के बारे में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस जजीरा अरब का क्या हाल था, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर की बेसत के साथ इसका कुरान में भी खास तौर पे जिक्र किया है कि वइन कानू मिन कब्ल लफी दलाल मुबीन, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ये लोग खुली गुमराही में पड़े हुए। उसके बारे में हमने कुछ बातें अर्ज की और फिर उसके बाद वो मुबशरात और वो मुअश्शरात, मुअश्शरात का माना यानी वो इशारात, मुबशरात का माना होता है किसी चीज के बारे में खुशखबरियां। तो ये मैंने सीरत के पहलू से पहले अर्ज किया था कि ये सारी चीजें ऐसे नहीं है कि खुद ब खुद एक इत्तेफाक है, बल्कि ये बिल्कुल अगर आदमी बड़े तअम्मुल से, गौर से, फिक्र से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हर पहलू पे नजर डाले तो समझ आता है कि खालिक कायनात ने ये सारा इंतजाम, ये सारी बिसात जो है ये इसीलिए बिछाई गई। ये ऐसा नहीं कि इत्तेफाक ऐसा हो जाए, यानी आप किसी भी पहलू पे नजर डालें। यही मैंने अर्ज किया था कि उस वक्त दुनिया में दो सुपर पावर्स थी, एक रूम और एक फारस, लेकिन ये सरजमीन हिजाज एक जमीन थी जिस पे दोनों सुपर पावर का कंट्रोल नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला का इस खित्ते को मंतखब करना हुजूर की विलादत के लिए, तो इसमें आखिर कोई बात तो ऐसी थी कि दो ताकतें एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, एक मावरा नहर तुर्कमेनिस्तान की तरफ और एक अल्बानिया से लेकर हबशा से लेकर यहां तक ये दोनों ताकतें बाहर से घिरे हुए हैं, लेकिन ये दरमियानी टुकड़ा किसी के तसल्लुत पे नहीं। और अल्लाह पाक ने इसी जगह अपने उस आखिरी नबी खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, क्योंकि ये तो फिर आपके अपने तदब्बुर पे होता है। अब देखें ना जी, जैसे आजकल सुना आपने और पढ़ा आपने अखबारों में भी, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का एटमी धमाके करना, ये करना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो इस पर एक जो साइंसदान है वो अपनी नजर डालेगा, जो सियासी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे, जो इक्तसादी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे कि इसमें कितना फायदा कितना नुकसान, वो जरब तकसीम लगाएंगे, और आमतुन्नास जो हैं वो अपने फिक्र से सोचेंगे, और एक कुरान और सुन्नत का तालिबुल इल्म जो है उसे अपने फिक्र और नजर की रोशनी में सोचना पड़ता है कि ये भी कोई ऐसी चीज तो जरूर है कि जिस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल है उसी साल में हाथियों के बादशाह ने हमला किया जो आप पढ़ चुके, और हाथियों के हमले को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों को भेजा, बाबील को, बड़ा मारूफ किस्सा है, तीन पत्थर लेके आए और गिराए गए और वो खत्म कर दिए गए हाथी। तो ये वो तीन पत्थर क्या थे जिनको अल्लाह ने खसूसी तौर पे कुरान में जिक्र किया, वरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जीदिन, कि हमने वो तीन परंदे भेजे कि अबाबील और ताकि वो उनपे पत्थर जो सिज्जील एक खास जहन्नम की आग में पकाए गए, आम पत्थर नहीं थे कि पहाड़ के उठा लो। तो इसी से वो आइटम के जर्रे पे आप गौर करें कि दुनिया उस जर्रे पे पहुंची कि एक जर्रे से भी इतनी बड़ी चीजें जो है वो तिबा की जा सकती है। तो असल चीज तो ये इस्लाम ने पेश की थी, कुरान ने पेश की थी, फिर अपनी अपनी सोच से लोग वहां पहुंचे कि ये एटम का जर्रा क्या है। अच्छा, इस एटम के जर्रे का उस साल पैदा होना जिस साल नबी पैदा हुआ हो क्या वजह है आखिर, इस पे आप गौर करें। अल्लाह ने आप इल्म दिया है, पढ़े लिखे लोग हैं, कि आखिर उसी साल ये अल्लाह बाग ने क्यों एटम का जर्रा पैदा किया। उससे पहले मुख्तलिफ कौमों पर अदाब आ चुके हैं, किसी को सयाह से मारा गया, किसी को बिजली की कड़क से मारा गया, किसी को पानी में डबोया गया, کسی کی بستیوں کو الٹ کے پھینک دیا گیا، کہیں ہوا بھیجی گئی، لیکن یہ تک عذاب کسی پہ نہیں بھیجا گیا کہ اوپر سے ایک چھوٹا سا پرندہ اڑتا ہوا آئے اور ایک چھوٹی سی کنکر ڈال دے، اور وہ اگر اس سے آگے حالت ایسی پیدا کر دے کہ فجعلہم کاسف ماکول، ایسے کہ جیسے کوئی گھاس کھا کھا کے چبا چبا کے جانور پھینک دیتا ہے نا، اتنی بڑی چیزیں اس طرح ہو جائیں۔ اچھا، اسی طرح آپ دوسری بات پہ غور کریں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ آیا تو آسمانوں پہ پہرے شدید ہو گئے، جنات سے کاہن کہیں بھی خبر لے آؤ، خبریں لے آؤ تاکہ ہم اپنی قوم کو خبریں دیں، وہ کہیں کیسے خبریں لے آئیں،

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बहुत सारे लोग बल्कि बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी हजूर के बेटों के नाम तैयब ताहिर लिख देते हैं, हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी बेटे का नाम तैयब और ताहिर नहीं था। आपका पहला बेटा अल कासिम था, दूसरा बेटा अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला के लकब दो थे, हजूर उसको तैयब पुकारते थे और माँ उसको ताहिर पुकारती थी। ये आपका लकब था, नाम अब्दुल्ला था। और एक बेटा हजूर का नाम इब्राहिम था, जो बीबी मारिया किबतिया से जो मकौकस ने हजूर को हदिया भेजा था उसमें उस औरत से पैदा हुई। और कासिम जो है तकरीबन वो भी 6-7 साल की उम्र में फौत हो गए, अब्दुल्ला भी सगर सिन में फौत हो गए, और इब्राहिम जो है वो तो अभी दूध पीने की उम्र में थे कि फौत हो। इसलिए एक सही हदीसे मुबारक में है, हजूर ने फरमाया इन्न लहू बुर्ज़ातन फिल जन्ना, मेरे बेटे के लिए अल्लाह ने जन्नत में भी दाया का इंतजाम किया है, वो जो दूध पिलाती है। और हुजूर ने यह भी फरमाया था कि अगर मेरे ऊपर नबूवत का दरवाजा बंद ना हो जाता तो शायद मेरा बेटा इब्राहिम जो है ये भी अल्लाह का नबी है। तो इतनी शान। और आपकी चार बेटियां थी, सैयदा फातिमा, सैयदा जैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम कुलसूम, रिजवान अल्लाह तआला अलैहिन्न अजमईन, ये सब के सब जो है बीबी खदीजा की पत्नी। और इसी से दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान दीन का ये प्रोपेगंडा कि हजूर ने इतनी शादियां की और हजूर ने इतनी शादियां की और हजूर ने इतनी शादियां की, जैसे रुश्दी बदबख्त ने लिखा, तस्नीमा नसरीन ने लिखा, और इसी किस्म के मलऊनीन जिनको असल में तो बुग्ध है इस्लाम से और दीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर वो इल्जाम लगाने में बहानों की तलाश में होते हैं कि कोई हमें मौका मिल जाए तो उनने ये साबित करने के लिए कि देखो जी हमारे नबी ईसा अलैहि सलाम ने तो एक भी शादी नहीं की और हजूर पाक ने तो 11 शादियां फरमाईं, तो नऊज़ बिल्ला आपको तो बस औरतों का ही हर वक्त ख्याल था कि जहां गए शादी कर ली, जहां गए शादी कर ली। तो ये एक इल्जाम है जिसकी कोई हक है। आप खुद अंदाजा फरमाएं कि आपके बच्चे की उम्र अगर 25 साल हो तो आप उसके लिए 40 साल की बीवी नहीं ढूंढते। और खास तौर पे आप तो डॉक्टर हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, आप देख लें कि सरजमीन मक्का की गर्मी हो तो 40 साल की उम्र के बाद औरत में रहता कौन सी जवानी रहती। चलो ठंडे इलाके की औरतें तो फिर भी बेचारी कुछ लंबी जिंदगी गुजार लेंगी, लेकिन सरजमीन मक्का की गर्मी हो और यहां पर खजूर की गिजा हो तो 40 साल के बाद औरत में बाकी क्या रह जाता है कि नऊज बिल्ला उसके लिए महज शहवानी जज्बे से शादी की जाए, फिर आदमी कुंवारी लड़की से शादी करे। और हुजूर ने तो जब तक बीबी खदीजा जिंदा रही 25 साल तक और कोई शादी नहीं, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, जौजा की उम्र 40 साल, और हुजूर फिर 50 साल की उम्र पर पहुंच गए और आपने कोई शादी नहीं की। तो जो जवानी का हिस्सा था हजूर का वो तो सारा बीबी खदीजा के साथ गुजर गया। तो जिससे साबित हुआ कि हुजूर की कोई शादी जो थी दरअसल वो अपने मंशे से नहीं थी, बल्कि यहां भी मेरे अल्लाह की निगरानी थी और अल्लाह के फैसले थे। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद में शादी हुई बीबी आयशा से, बाद में शादी हुई बीबी सफिया से, बीबी उम्मे सलमा से, वो भी बूढ़ी औरत थी, बीबी सौदा से, वो भी बूढ़ी औरत थी। बीबी सफिया से क्यों हुई कि खैबर के सरदार की बेटी थी, सब लोगों ने कहा कि हजूर सरदार की बेटी, अच्छा है कि अगर आपने किसी और को देना है बांदी बना के तो बेहतर है अपनी बांदी बना ले ताकि कुछ तुम सरदारों की इज्जत हो जाए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिना पे शादी की। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नबी के उठने पे सोने पे भी अल्लाह का पहरा हो उस पैगंबर की शादियां मंशा खुदावंदी के बगैर कभी हो सकती। यही वजह थी कि जब सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा पे तोहमत लगी, मुनाफिकीन ने तोहमत लगा दी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ा लंबा वाकया है कुरान में भी मौजूद है, हजरत उमर से पूछा कि उमर तुम्हारी क्या राय है कि बीबी आयशा पे

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब जब हजर अस्वद का वक्त आया, अब सब कौम लड़ने मरने पे आ गए। हजूर पाक की जात थी जिन्होंने चादर बिछाई और कहा कुरैशियों से कि मत लड़ो।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब सैयदना सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु चले, हजरत उस्मान के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, फअस्लम उस्मान, हजरत उस्मान भी मुसलमान हो गए। फिर हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, हजरत साद भी मुसलमान हो गए। अब्दुल रहमान इब्ने औफ के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, वो भी मुसलमान हो गए। हजरत तलहा के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, वो भी मुसलमान हो गए। और इसी तरीके से अब यानी जो इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो लोग सैयदना अबू बकर के हाथ पे इस्लाम ला रहे, और फिर फुकरा में से, ज़ोफा में से